0: सगाई। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई।
1: ए भाई, ये आप ऑलरेडी 5 बार बोल चुके हैं, मेरे को तो लगता है कि आप तूनोगे, आप भूलोगे, आपका लीवर सड़ जाएगा। ए भाई, मैं पिंकी में हूँ, क्यों एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।